0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: Trip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: ओहो आज दाई हो नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
3: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
2: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत त
3: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहां कई जाएत
2: ए ओसिनो कला से उहां जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
3: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
2: कान के समस्या बा उपचार करैकला कहाँ लैजिना हो
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहां मिलत
2: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहां ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ट
3: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी

0: उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सकु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सकु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सकु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाँटी रोग के सकु उपचार सेवा देती आइल बा।
1: ओस्तक, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सकु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन बराल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
0: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 और 98482804465।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करू
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे कृष्णसार एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताई, प्यारा से कार्यक्रम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी पराधिंग में जो सदा साथी रहे आज भी हैं चंदा जी। हाँ तो साथी, नवा पुरान कवाली नात वगैरह जो भी आप लोगों का सुने का है तो मैसेज भेजा जी 98 55 96 306 में, और फोन लाइन में आपने कार्यक्रम में यहाँ जब क्वेश्चन के जवाब दिया जी तो आप फरमाइश भी कह सका जात है क्वेश्चन के साथ साथ में। तो साथी, आज के कार्यक्रम जो 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम जो ही आप लोग सुना जाता है आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज से चला था, ये कार्यक्रम सुना भी जाते है देखा भी जाते है। कैसे कार्यक्रम आप लोगों के लोकप्रिय कार्यक्रम है जो बहुत साथी लोगों के दिल छुए वाला कार्यक्रम है। तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए 081415 122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 122 के लाइन में। आज के क्वेश्चन जो हम रखबे क्वेश्चन के उत्तर दिया जी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है जहां से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी, जहां सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार यानी सब मेर कुशल कारीगर द्वारा कपड़ा सियाँ बनाया जाता है वहाँ से आपका पुरस्कार देवे। तो पहला नंबर में है खूटी पर यहाँ खेती कीन बादर पर खरिहान, खूटी पर यहाँ खेती कीन बादर पर खरिहान, अपने घर आप ही फूक के बैठ के साल भर खाए। हाँ तो साथी एक नंबर में है, दो नंबर में है, आप लोग ध्यान से सुना जी, दो नंबर में है हाथ भरे के घारी नौसे गाय अंबाए सब गाय जंगल का चलेगी गोबर परा झुराए। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो ये कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज़ से। हाँ तो श्रोता आप लोग एकदम नंबर में आवाज है तो ले सुना जाए प्यारा से। हाँ छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद मैं सुना जी प्यारा से कव्वाली।
1: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
2: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
1: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
2: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
3: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
2: धन्यवाद शुभश्री IVF हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
3: थप जानकारीका लागि शुभश्री IVF क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98 61 14 16 99।

जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेबो मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो हंसी।

के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल का एक हार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

को दिन बोले फरिश्ते कर गई है दुनिया की सैर, या खुदा दुनिया तेरी सुनी है औरत के बगैर। उठ पड़े हिकमत दिखाने के लिए कुदरत के हाथ, सोच ली मौला ने औरत को जन्म देने

0: या रूप सैयारों से मांगा, रंग उषा से लिया, पंखड़ी से ली नजाकत और कलियों से अदा, शाम से काजल लिया और सुबह से गाजा लिया, बिजलियों से कैर मांगा, आग से गुस्सा लिया, हौसला चट्टान से और दर्द पंछी से लिया, आसमां से जुल्म मांगा, सब्र धरती से लिया, शाख से अंगड़ाइया, झरनों से इठलाना लिया, बुलबुले से नाजुकी, नदी से बलखाना लिया, आईने से हैरतें, तस्वीर से खामोशिया, लहर से अटखेलिया मांगी, पवन से शोखियां, आंख ली हरनी से और शबनम से आंसू ले लिया, बदलियों से जुल्म नजारों से जादू ले लिया, आजवंती से शर्म और रात रानी से हया, आबरू मोती से ली, सूरजमुखी से ली वफा, जहर नागन से लिया और सांप से डसना लिया, काटना बिच्छू से मांगा, तीर से चुभना लिया, लोमड़ी से मांग ली ताम्र की मकारिया, मक्खियों से शोर और मच्छर से ली अयारिया, इतनी चीजें जमा हो के जब लगी मौला के हाथ, और इन सबको मिलाया जब खुदा ने एक साथ, तब कहीं जाकर बड़ी मेहनत से एक मूरत बनी, दिलशी पे करबला एक दिलरुबा सूरत बनी, देखकर अपनी कलाकारी को मौला हंस पड़ा, और उसी अनमोल शय का नाम औरत रख दिया, रख चुका जब नाम उसके बाद यूं कहने लगा, क्या मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूं,
1: मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूं,
0: अरे तुझको दुनिया

0: हाँ तो श्रोता छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से कवाली सुनागा तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी हाउजी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में हाउजी कोई साथी हमारे फोन लाइन में है उनका स्वागत करी नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार आपके नाम
1: हमारा नाम मोतीलाल यादव बाकी गाँव से बोली है
0: मोती मोती कहे कि मोती
1: मोतीलाल
0: हम जानी मोती मोटी लाल है नहीं
1: हाँ मोतीलाल
0: अरे खाए खाए माखन मोटाई गए हो तो का करे खाए आवाज नहीं हो ऑफिस में
1: आवाज नहीं मौसम का
0: अगले कार्यक्रम में यहाँ आपके विजेता नाम आवा है
1: हाँ
0: आयो अपन पुरस्कार ले जाओ ये सम्मान भरे में नहीं तो नहीं हम जानी थे
1: ठीक है
0: हाँ खूब बढ़िया बाहर से मट्ठा उठा ले आयो खूब सही घर एक टाइम के दूध जानो नहीं सही है नहीं मोतीलाल जी
1: हाँ सब का
0: हाँ और सब ठीक है
1: ठीक है सब
0: हाँ
1: बढ़िया है
0: बढ़िया है तो कार्यक्रम शुरू से सुना था
1: हाँ सुने हम
0: कहाँ हुए भैंसिये थी रहो कि घरे हो
1: अरे हम
0: भैंसियन तिर को आए
1: अरे शायद ना है भैंसी भैंसी
0: नहीं रखे हो ए हम जानी चरावत हो
1: ना है शायद
0: तो कार्यक्रम में यहाँ क्वेश्चन के उत्तर दे
1: क्वेश्चन के उत्तर एक तो हमका शुरू जो एक नंबर के है
0: हाँ
1: वो लागत कुम्हार में कहा है कि सब भाड़ा मतलब बनावट नहीं है
0: हाँ हाँ
1: अरे दिया कुज्जा उज्जा से बनाओ थे हमको लगा एक तो ई हो
0: हाँ
1: और दोसर सारंग के छत्ता हो
0: तो कुम्हार के रू पूरा ओके अर्थ बताओ ना
1: अरे वो जो चाका होत नहीं है घुमावत नहीं है
0: हाँ
1: हाँ तक उसे मट्टी के बर्तन बना के तगे सुकत है तगे साल भर बैठ के खात हमको बेच बेच के
0: अच्छा
1: और एक सारंग के छत्ता हो हमको लागत है
0: छत्ता
1: अरे सारंग लागत है तो के सारंग है जब उड़ के दुकान करते वो
0: छाता है
1: हाँ हाँ
0: हम जाने कहा तो हमार छत्ता
1: और वो सुनो ना
0: आए?
1: दाता फिल्म को सही सुना दे उसको कव्वाली
0: तेरी मेरी आ रही है दोस्ती हमारी
1: हाँ हाँ
0: ठीक है सुनाए देवे किका किका सुनाई हो
1: अरे तेरी मेरी आई नहीं वाला जो रोना धोना छोड़ मैं से ना था जोड़ वाला गाना
0: ओ गाना होए
1: सवाल सुना रहा है
0: तेरी मेरी यारी ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है अल्लाह को है प्यारी ये होए
1: ठीक है ये सुना दियो
0: था ठीक है नमस्कार
1: नमस्कार
0: हाँ साथी मोतीलाल यादव रहे बाकी गांव से तो साथी ऐसे सुने 84-15-122 के लाइन में आओ जी नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवाजी कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाता है आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से यही कार्यक्रम चलत है आप लोगों के प्रत्येक हफ्ता के आवत है 1 बजे से 3 बजे तक रात है बीफाई के और सोमवार के कार्यक्रम तो 6 दिन के पूरा कार्यक्रम है मगर अब कार्यक्रम चंदा जी भी सगवर तो इतवार से कोशिश करी नहीं कि इतवार चलिए थोड़ा बहुत व्यस्त काम में रहा इसे कार्यक्रम नहीं चले नहीं तमाम श्रोता लोग भी पूछे लागत है तो कहा जाते अब का किया जाए दुन हाथ दुन गोड़ जहर जाओ हर बनी जहर जाओ हर बिगड़ी तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जी तो ऐसे सुना है 84-15-122 के लाइन में ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है जहाँ सब मेरे के कपड़ा सेट है वहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जीता हो हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ के बाद में सुना जाई प्यारा से कव्वाली

हाँ तो सुरताई जो प्यारा से गाना सुनागा, कव्वाली जो दोस्ती के ऊपर रहा है, तेरी मेरी यारी दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी, तो अल्लाह और भगवान सबका कोई पसंद है कोई प्यारा है, मगर बहुत अच्छा रहा है मोतीलाल जी के फरमाइश रहा है। तो साथी ऐसे सुने कैसी 415 122 के लाइन में आवाज है, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्रत्येक हफ्ता बीफे के आवत है, जीवानाथ कव्वाली वगैरह वगैरह से आपके कार्यक्रम शुरुआत किया जाते हैं। तो साथी आप लोग के जो ही हमरे किसी सारे फेम 94 MHz से जो पुरस्कार भी दिया जाता है, कार्यक्रम बहुत पुरान कार्यक्रम है जिमा आप लोगन का तमाम पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे हमरे तमाम श्रोता लोग नेरे दूर के रहें, तो श्रोता आप लोग जो पुरस्कार में विजेता हुआ जाए तो जैसे बीफे के विजेता हुआ जाए तो लौट के बीफे भरे में यहाँ आप अपन पुरस्कार ले जाओ जी, उके आगे हमारे आपके कोई बातें नहीं है, ना हम हाँ कह पेबे ना आप मांग पे हो, और अंदर आए जाओ जी जो के हफ्ता के अंदर में तो आपके काम जरूर हो जी। कहे से यहाँ आवा जी, आप जब फ़ोन किया जी, फ़ोन करके अगर हमसे भेड़ नहीं हुआ तो हम आपके काम बनाए देवे। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415 122 के लाइन में एकदम आए के जो हमरे क्वेश्चन है, जैसे खूटी पर यहाँ खेती की इन बादर पर खरिहान, अपने घर अपना फूक देन घर भर बैठे खाए, एक नंबर में आए हाथ भरे के घारी नौ से गाय अमाए, और सारी गाय बनका चलेगी गोबर पर आ झुराए। तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे के आप पुरस्कार ले जाओ जी, पुरस्कार के हम एकदम आप लोगन के लिए समर्थिक हैं। ये कार्यक्रम में यहाँ जो हमरे प्रेज कराए ज्योति टेलर के जो हमरे पप्पू और जफरुद्दीन हैं, जहाँ सब मेर के कपड़ा सेत हैं, वहाँ से आपका पुरस्कार दिया जी, मगर आप लोग सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे के आप विजेता जरूर बना जी। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में आवा जी, तो बोले हम चलित है पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद माँ फिर सुना जाए प्यारा से कव्वाली।

0: Sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: Beer Dental.
3: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-532-375।
5: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल मा ले जाए।
6: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
5: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
6: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
5: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
6: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: करने। परमिट है ना इनके पास?
1: चंदा कहाँ है? चंदा, चंदा, अरे आएगी भी कि नहीं?
2: कुछ पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अरे आएगी तो आएगी, नहीं आएगी पहले एक दाम।
1: तुम लोग उसे छोड़ के क्यों चले आए?
3: आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: Early Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
2: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यूँ गिल्टी और तमाम मेयर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
4: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं।
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो सुरताई प्यारा से गाना सुनागा। छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, कोई साथी मेरे फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत के लिए नमस्कार। नमस्कार।
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपके नाम?
1: राम खेलावन थारू जल्दी सत्य किया।
0: और राम खेलावन बढ़िया है?
1: बढ़िया है। सोई गए रहा नब्बे उठे हम।
0: सोई गए रहा हूँ।
1: हाँ पेरवा परे
0: बीरे वक्त रे।
1: हाँ
0: ये तो हवा नहीं पाए हो, खूब झरझरा हुआ पुरवैया चलत है।
1: हाँ पुरवैया चलत है, वही तो आंगनवा में रोवा है।
0: का
1: तो
0: दे चले पुरवैया कै लहरा हो पिया सोए रतिया सोई गे बालम, तो तू दोपहरिन में सोई गयो।
1: मारे तो का करी यहाँ को का के पहरे में निराल गया रहा। अब 2 बजे नींद खुला।
0: और सब ठीक है?
1: सब ठीक है।
0: हाँ तो क्वेश्चन के उत्तर दो।
1: तो क्वेश्चन वो हम जानी तब तो अभी
0: नहीं सुने हो। जैसे खूटी पर यहाँ खेती कीन, बादर पर खरिहान।
1: खूटी पर यहाँ खेती कीन,
0: खूटी पर खेती कीन, बादर पर खरिहान। अपने घर आप ही फूक दे, घर बैठे साल भर खाए। एक नंबर माँ है, 2 नंबर माँ है। हाथ भरे कई घारी नौसे गाय अम्बाए। हाथ भरे कई घारी नौसे गाय अम्बाए, सब गाय जंगल का चलेगी गोबर पर आ झुराए।
1: एक हाथ के घारी तो मधक खाता हुए हो, उड़ के चले जाते जंगलों में तो सुखाए जाते छटवा वही गोबरवा।
0: हाँ हाँ।
1: और खूटी पर यहाँ तो तुमने घर से आए टोलना में यहाँ तो बनावा थे हो नेपालगंज टांगा स्टेन से
0: कहाँ बना?
1: कुम्हार लोग, अरे कुम्हार लोग सब घर से आए टोलना में यहाँ। अरे खूटी पर यहाँ चकला बनाए सब घुमावत रहे तो टांगा स्टेन से धरे रहे सब भुड़की पिया।
0: अच्छा
1: वो हमरे हमरे यहाँ जमनी में यहाँ एक कुम्हरवा बनावा थे सबकी जंगली बनवा के लाए हम।
0: जमनी में बनावा थे कुम्हरवा?
1: हाँ वो खनैथी में यहाँ तो पूरा गाँव है गधेलवे।
0: गधेलवे?
1: हाँ
0: गधाव रखे तो, हैं।
1: अरे हाँ हाँ तो हुआ तोरैया खनैथी में है।
0: गधेलवा ना हो तो कह पर लात के ले जी बेचे ना।
1: और एक तो हमको वो कवाली सुनाओ गंगा जमुना सरस्वती के।
0: गंगा जमुना सरस्वती के कौन तो कवाली तेरे दर को
1: कवाली अक्के तो हो छोड़ दिया कि तोड़ दिया मेरा दिल तोड़ दिया
0: तेरे दर को छोड़ चले हम।
1: हाँ हाँ
0: अपना दिल हम तोड़ चले हम
1: तोड़ चले हाँ।
0: ठीक है तो अब सिख बजा वाला कवाली सुनाई हो की का की का?
1: पहले तो आप कहीं हो प्राविधिक आज को बैठे हैं उनका सुनाई दे
0: चंदे जी है।
1: हाँ वो पूरा कृष्णा सार एफएम कहीं है और हमको जाने पहचाने वाले सबका
0: है ना। ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी जमनी सतपुतिया से रहा है राम खेलावन थारू जी। तो साथी इसे सुना क्या 84-15-122 के लाइन में साथी आओ जी कहे से कार्यक्रम जो चला था आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश ही अपने प्यारा कार्यक्रम जो यहाँ के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz जो अपने नेपाल गंज जो बिलासपुर बारा बाके से चलत है। तो साथी इसे आप लोग नंबर में आ जाए इसे मैसेज हमरे थे अब मैसेज के पाला आएगा। मैसेज भी बहुत है जैसे मैसेज भेजे वाले हैं मैसेज लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है इनके ठिकाना है शिवानी गिरिल उद्योग जो बाबा कुट्टी 4 बाके से मैसेज भेजी ने कहने कि कोई प्यारा से कवाली सुना दिया जी और जो क्वेश्चन के उत्तर देने कहने एक होए कुम्हार के चाक जो खूटी पर खेती करत है यानी एक खूटी पर यहाँ चकवा रख के नचावत है कुम्हार के चाक होए और दोसर होए का बोलते सारंग के छाता। ठीक है वो तो लास्ट में हम आप लोगन का बताइए। तो साथी ऐसे मैसेज में भी आप लोग आवाजी 98-55-96-36 में मैसेज भी लिख के भेजा जी और लिख के भेजे से आपके फ़ोन ना लागी तो मैसेज में तो हम पढ़वे करवे। तो कोई साथी मेरे फ़ोन लाइन में आए हैं कि गए कि चले गए आए रहे चले गए तो आवे जाए तो ऐसे हो ही जाते। और दोसर लिखी ने सारंग के छाता होए ठीक है। और कहने की अभिषेक बजे वाला गाना जो हम अपने ग्रिल उद्योग में जितने कार्यकर्ता और जितने ग्राहक वर्ग आते हैं सब लोगन का सुनावा चाहिए थे मियाँ साहेब, आपका आपके पूरे रेडियो परिवार का धन्यवाद है। ऐसे दोसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले हैं, मैसेज भेजे नहीं है लेकिन सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है कोई साथी आए गए हैं उनका पहले स्वागत कर ली। नमस्कार।
2: हेलो।
0: नमस्कार।
2: हेलो।
0: नमस्कार।
2: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम। आपके नाम?
2: महबूब अली अंसारी, रानी तलाव।
0: महबूब अली अंसारी। और महबूब बढ़िया है?
2: बढ़िया है, आप लोग बढ़िया हो तो हम बढ़िया।
0: आज कहाँ चांद निखर आवा?
2: निकल आओ कोई तरफ से।
0: और हमरे का नाम उनके संघारी के
2: कैलाश,
0: कैलाश
2: ड्यूटी पर भैया
0: कैलाश ठीक ठाक हैं?
2: हैं तो ठीक है ठाक।
0: अब तो आर खिड़किया उनके मुहरवा भेंट हुआ करता है, हम लोग बहुत दूर हैं नहीं नहीं।
2: हाँ हाँ बात तो सही
0: है। कहते ये ककोना एक पाही आई जाई टांग टांग नोच जे आवे जाही, जब भेंट करे जाओ तो अति दूर टांगे नोच जाते, सब थके लाग जाते। और कैला और बताओ महबूब अली जी
2: बढ़िया है?
0: तो कार्यक्रम शुरू से सुनत हो?
2: मैं शुरू से ना सुने थे, ये कि शुरुआत हो गया रहा
0: तो उत्तर उत्तर दिया जाए।
2: उत्तर वही है, एक कुम्हार के चाक और छाता सारण।
0: एक कुम्हार के चाक और छाता
2: सारण।
0: ठीक है, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: हाँ साथी रानी तालाब से रहा है जो हमरे बहुत ढेर दिन के बाद आज ही आए हैं महबूब अली अंसारी जी, तो इसे सुने कैसी 4-15 एक से बैस के लाइन में आओ जी, कहते हैं लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ, जीता जाए परहेज और ज्योति टेलर से ले जाओ। तो साथी ये कार्यक्रम जो आप लोगन के अपने सुंदर नगरी नेपालगंज जो ही बिलासपुर बाके जो ही किस सारे फेम जो जत्ते तेज है, हिरन के छलांग है जैसे आवाज़ है, हम बोली थे आप उधर से बोला जाता है, पूरे विश्व में ऑडियो वीडियो ये सब सुना जाए देखा जाए, कैसे ही कार्यक्रम आप लोगन के एकदम कार्यक्रम प्यारा कार्यक्रम है। तो साथी ऐसे दोसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं, ये मैसेज भेजे नहीं है लेकिन सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है। मैसेज लिखे वाले हैं नान बाबू पवना पान भंडार जो खजुरा पेट्रोल पंप से लिखने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके आवाज़ मियाँ जी बहुत अच्छा लागत है, भगवान से यही कामना करी थे कि अब आपके ज़िंदगी और लंबी हो जाए और आपकी आवाज़ की तारीफ जितना भी किया जाए, धन्यवाद है आपका। तो कहीं नहीं हमका जैसे नान बाबू पहुना कह के चिन्हे जाने वाले सब लोगन का अपने जितने घर के फैमिली घर परिवार हैं लड़का बिटिया हैं सब लोगन का सुनाव चाहिए थे, धन्यवाद है। ऐसे दोसर मैसेज है, मैसेज भेजे नहीं है, ये मैसेज भेजे श्याम थापा जो खजुरा एक नंबर से, इन्हों कहने कि मियाँ जी तुम्हार कार्यक्रम हमका बहुत अच्छा लागत है और कार्यक्रम में यहाँ तो आपके आवाज़ बड़ी बढ़िया बहुत बढ़िया लागत है और आवाज़ आए एक बार इधर भेंट वोट कह लिया जाए, ढेर दिन होगा भेंट नहीं भाई, ठीक है। कहने कि अभिषेक बजे वाला कोई भी कव्वाली सुना दिया जी, हमका श्याम कह के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगों का सुनाव चाहते। तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जाए प्यारा से कव्वाली।
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
4: ओहो सर, कार्यक्रमको सबै तयारी त भयो तर कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन, के गर्ने होला?
5: किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, न्यू कैलाश दर्शन होटल छँदैछ नि।
4: कस्तो होटेल हो कुन्नी? हामीले खोजेको सुविधाहरू छ कि छैन?
5: किन नहुनु ल सुन्नुहोस्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गेटदेखि 500 मिटर पूर्व रहेको यस होटलमा त गाडी पार्किङको सुविधा भएको, एसी रुमको व्यवस्था भएको, क्याबिन सहितको रेस्टुरेन्ट भएको, कार्यक्रमका लागि हल अनि अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा खानेकुराको साथै बसोबास पनि व्यवस्था रहेको छ। एनिभर्सरी, बर्थडे तथा विशेष पार्टीको अवसरमा 15% विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ।
4: यति सुविधा पाएपछि त अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
5: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98 87 57 4 66।
4: आज म एकदम खुसी छु।
5: होइन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
4: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भोलि नै बाबालाई भनेर जान्छु।
5: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानु।
4: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित GM कलेजको BBS प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, CA काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, ICT क्लास, AC क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यहीँ जाने निर्णय गरे। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
5: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज GM कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
4: ल सुन, त्यसो भए 98 580 40 388, 98 045 086 26 र 98 580 85 040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
5: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
6: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
7: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
6: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
7: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
6: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
5: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
6: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 28 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC सफल भविष्यको बलियो आधार।
8: भर्ना खुल्यो।
9: यस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ।
8: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट BHM, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट बिआइटिएम, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस, ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क बिएएसडब्ल्यू।
10: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम जीपीए प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
8: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज?
10: बिएचएम ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टर्नसिप तथा रोजगारीमा सहयोग, होटल, एयरलाइन्स, रिसोर्ट, क्रुज लाइन लगायत आतिथ्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र होटल फ्रन्ट अफिस, फुड एन्ड बेभरेज, इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान।
8: बिआइटिएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट संयोजन, सफ्टवेयर डेभलपर, आइटी म्यानेजमेन्ट, डाटा विश्लेषक लगायतका क्षेत्रमा करियर, आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाण पत्रका लागि बलियो आधार।
10: बिबिएस ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज राष्ट्रिय विश्वविद्यालयद्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम, बैंकिङ, व्यवसाय, लेखा, वित्त, मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर र व्यवस्थापन, वित्त, बजार व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी सुदृढ आधार।
8: बिएएसडब्ल्यू ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क गैर सरकारी संस्था, एनजिओ, अस्पताल, विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियरका अवसर, समाज सेवा, नेतृत्व तथा समुदाय विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप, समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर।
10: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू, अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक, कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, एयर कन्डिसनर, एसीको सुविधा, समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा, आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श।
8: नोट, बिएचएम र बिआइटिएम को सिमेट फारम पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज, नेपालगञ्ज 10 पासाङ लामु रोड, फोन नम्बर 081-532-07 र 081-535-602, इमेल blc.npj@gmail.com, वेबसाइट brightlandcollege.edu.np।
11: नमस्ते दाई।
12: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
11: विदेश जान आँटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए। अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
12: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त। अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
13: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
14: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीको साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
10: हाम्रा विशेषताहरू,
14: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
10: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा,
14: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
14: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबिएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा,
14: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
10: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%-50% सम्म विशेष छुट सेवा।
14: प्रबन्ध निर्देशक, एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि, एनआइसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
10: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।

0: California. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580303479 र 98480213780।
3: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल मा ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
4: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9829808665 और 9842808465।

0: हाँ तो श्रोताई प्यारा से गाना सुनागा और आप लोग एकदम खुशी है गवा गाँव है एकदम आनंद आएगा हुए आप लोगन के यहाँ। तो इससे आप लोगन के लोकप्रिय कार्यक्रम चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार जो आपका म्यूजिक में बजतो भी है तो इससे आप लोगन के यहाँ भी एकदम अच्छा लाग हुई। तो साथ ही इससे आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए सुना 81415 के लाइन पर आ जाए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415-122 के लाइन में जो हमारे देश विदेश पड़ोस भारत के साथी लोग आवाजी। तो पहला नंबर में है खूटी पर खेती की बादर दे बादर पर खरिहान और अपने घर अपने भूते फूक दिन घर पर बैठ के खाए एक नंबर में है। दो नंबर में है हाथ भरे के घारी नौसे गाय अबाए सगरों गाय जंगल चलेगी गोबर पर आ झुराए। तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी कहाँ से दिया जी आप लोग जाना जाता है आप लोगों के माना जाना हुआ नंबर वन टेलर जो ज्योति टेलर है सदर लाइन में वहाँ से आपका टी शर्ट देवे। हाँ तो जहाँ सब मेर के कपड़ा लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सुला यानी सब मेर कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सिया जाते हैं बनाया जाते हैं वहाँ से। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए मैसेज हमारे हाथ में आएगा मैसेज भेजे वाले हैं संगम टेलर से मैसेज भेजने हैं कृष्णा परियार जी ये लिखने सबसे पहले मियाँ साहेब नमस्कार। तो नमस्कार है अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था मियाँ साहब हमका कव्वाली सुना दिया जी ए रात अंधेरी एक दीप जला रखना मैं आऊँगा मिलने को दरवाज़ा खुला रखना। अरे कृष्णा जी तू तो जमाना सावत हो खाली हमका बुट्टा दिया हो कि मियाँ जी का बताए रहे कि वे तो कहीं नहीं रात अंधेरी एक दीप जला रखना मैं आऊँगा मिलने को दरवाज़ा खुला रखना। अब सिख बजे वाला कव्वाली कहने कि हम अपने पूरे चीने जाने वाले अपने साथी संगी का अपने घर परिवार का विशेष कह के सुभाष परियार का मोहम्मद अफरोज खान का और शीरीष चौधरी के यहाँ शिशिर चौधरी का और तमाम मिला का सुनाओ चाहिए धन्यवाद है कृष्णा जी ऐसे मैसेज भेट होते रहा जी हमार आपके दोस्ती सलामत रही बस यही दुआ हम आप लोगों से कही थे कि एकदम खुशी आबाद रहा जाए चाहे जैसे भी यादगार जरूर बनाए रहा जाए। तो ऐसे दूसरा मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये लिखने हैं सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है इनके ठिकाना है जैसे खजुरा जानकी गांव पालिका खजुरा नहर से दल सिंगार यादव जी ये लिखने कि मियाँ जी आपके आवाज़ बहुत अच्छा लगा था आपके आवाज़ में यहाँ टिकटॉक में हम देखा रहे आपके तो यहाँ जो कहा रहा कि मियाँ जी का कहाँ चमकाए ली तो वहाँ फोटो के अंदर रहे हो मोबाइल के अंदर रहे हो मगर मियाँ जी वो कव्वाली सुनाए दिया जी कव्वाली बजाए रहा हो मदीने वाले से मेरा सलाम कहना ठीक है वो तो कुली फिल्म के रहो हाँ तो कहने हमका दल सिंगार के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुना दिया जी कोई भी प्यारा कव्वाली। तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन उनके बाद में सुना जाए प्यारा से कव्वाली ये रात अंधेरी है एक दीप जला रखना मैं आऊँगा मिलने को दरवाज़ा खुला रखना मगर छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में रेडियो से दूर न जावा जी कहे से भी समय ज़्यादा है।
1: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
2: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगंजको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
1: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त
2: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठीक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ
1: अनकल सेवाहरू,
2: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी, नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
4: सुविसु अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविसु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछ। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुविसु
5: फिर्ता 20% सम्म क्यास फिर्ता
6: जहिले पनि जहाँ पनि।
7: क्यास फिर्ता लिनुभयो त?
8: एनसेल प्याक किन्नु भयो त?
9: जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
10: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
11: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
10: विशेष सुविधा
11: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
12: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9, रामलीला रोड, नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।

हाँ तो सुरताप का किया जाए, समय के एकदम पाबंदी भर चले परत है साथी। अब समय एकदम साथ छोड़े लाग है तो ऐसे अब हमारे स्टूडियो के घड़ी में 2:55 होएगा है। तो साथी आज के फोन करे वाले साथी रहे हमरे जैसे मोतीलाल जी रहे जो बाकी गांव से, ऐसे दोसर हमरे साथी फोन करीन ना है, तमाम साथी लोग फोन करीन ना है। खेलावन थारू रहे जमनी सतपुतिया से, ऐसे महबूब अली रहे नेपाल, महबूब अली दर्जी आएगा है, माफ़ किया जी, महबूब अली अंसारी जो ही रानी तालाब से रहा है। और तमाम मिला मैसेज में भी सही गलत बताए नहीं, मगर आज के विजेता भी हैं महबूब अली अंसारी रानी तालाब नेपालगंज बांके से। हाँ महबूब अली अंसारी जी आपका बहुत ढेर से घर बधाई है, आपका पुरस्कार टी शर्ट मिला है। पहला नंबर मारा है खूटी पर खेती के इन बादर पर खरिहान, ये हो कुम्हार के चाक और हो कुम्हार के आवा, तो उसका फूक देता है अपने कुम्हार आवा फूक देता है तो घर भर बैठ के साल भर खाते हैं। और हाथ भरे के घारी नौसे गाय अबाए, सगरों गाय बनका चलेगी गोबर पर आ झुराए, ये हो सारंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कार्यक्रम में यहाँ जो प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम का देश दुनिया में पठन जो हमारे प्रार्थी माँ चंदा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्यारा से कव्वाली के साथ माँ, प्यारा से कव्वाली के साथ माँ हाँ परसोता संचालक मियाँ जी विदा ली थे, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अगले हफ्ता जरूर मिलब, सुनते राजी रेडियो किसी सारे फिल्म के साथ माँ राजी, नमस्कार।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9802-825-4037।
5: नींद ना आए हमको हाय जग सोना
3: है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ब्रामिल उनके इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
6: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9840-20-697, 9850-23-697 और 9804-83-697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पिराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
6: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
6: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
6: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगरपालिका वडा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगरपालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377 सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
9: Back to back. Back to back.
10: In this song on
9: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी